0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर उल्लास स्कीम के तहत मुकम्मल तौर से खानदान रियासतों और यूटीज की फहरिस्त में शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज को बाइख्तियार बनाने में तालीम को अहम जुज दिया करार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर PB वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का किया आगाज। जम्मू कश्मीर के गोल्फिंग वसाइल को किया उजागर। नायब वज्राला की सदारत में जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 176वीं मीटिंग मुनाकिद। प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर दिया जोर। और मरकजी सरकार ने साल 2021 से अब तक 36 ममालिक से 274 मफरूर मुजरिमों को भारत वापस लाने में की कामयाबी हासिल। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज को मुकम्मल तौर से बाइख्तियार बनाने में तालीम को एक अहम जुज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि तालीम के मिशन को आगे बढ़ाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर मरकजी सरकार की उल्लास स्कीम के तहत मुकम्मल तौर से खानदान रियासतों और यूटीज की फहरिस्त में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने स्कीम के तहत 99.09% कामयाबी हासिल की है। LG ने इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने के लिए असातिज़ा, मुंतजमीन और दीगर यकीन को मुबारकबाद पेश की है। अब तक 9 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को उल्लास के तहत मुकम्मल तौर पर खानदा करार दिया गया है, जिनमें लद्दाख, मिजोरम, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर 10वें पायदान पर है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर इस फहरिस्त में सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है, जिसने संगे मील तय किया है। इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ट्रेनी अफसरान ने आज लोकभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए LG ने कहा कि शफाफियत, जवाबदेही और एतमाद मुल्क की इक्तिसादी साख की बुनियाद है। उन्होंने ट्रेनी अफसरान पर जोर दिया कि वो विकसित भारत 2047 के लिए सरमायाकारों के एतमाद को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस मुबैना कार्रवाई समेत कई दीगर मामलात को लेकर हिजब इख्तिलाफ के एहतजाज के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई पहले इल्तवा के बाद जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने हिजब इख्तिलाफ के शोरगुल के बीच वक्फ सवाल चलाने की कोशिश की। तहम हिजब इख्तिलाफ के अरकान ने नाराबाजी जारी रखी और कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। इसी तरह सभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फ सवालात शुरू करने की कोशिश की, ताहम हिजब इख्तिलाफ के अरकान ने शोरगुल जारी रखा और ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। दरअसल BJP ने कांग्रेस और हिजब इख्तिलाफ की दीगर जमातों पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के रवा मानसून इजलास की कार्रवाई में रखना डाल रहे हैं। नई दिल्ली में आज BJP के कौमी तर्जमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और इसके इतिहादी वक्फ सवालात और वक्फ सिफ्र के दौरान हंगामा आरई और शोरगुल बपा कर देते हैं। दरियासना वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानब से लोकसभा में पेश किए गए अप्रोप्रिएशन बिल 2026 को आज

0: किया गया, जबकि राज्यसभा ने आज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल को लोकसभा ने पहले ही पास किया है। इस बिल के जरिए रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स 1969 में तरमीम की गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में जम्मू कश्मीर ओपन 2026 पीबी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के पांचवें शुमारे का आगाज किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि गोल्फिंग सियाहत को जम्मू कश्मीर के मजमुई सियाहती मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग के साथ साथ सिदरा जम्मू में आला मियार का गोल्फिंग बुनियादी ढांचा कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि वादी अब गोल्फिंग के मंजरनामे में अपना नुमाया मकाम बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर में लगातार गोल्फ टूर्नामेंट्स का इनेकाद कर रही है ताकि कौमी, बैन अलाकवामी और मकामी खिलाड़ियों को वादी की तरफ रागिब किया जा सके।
1: This tournament is an important milestone in putting golf back on Kashmir and particularly RSGC back on India's golf map. We have more than 100 professional golfers who have come as part of the DP World PGTI. We have more than 10 overseas entries as well, and our endeavor is that this be an annual tournament, not a one-off.
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जे एंड के रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम 2022 के तहत मकानात और शहरी तरक्की महकमे में 42 उम्मीदवारों की तकरीरी को मंजूरी दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि इस पहल से अहल उम्मीदवारों को कंपैशनेट बुनियादों पर रोजगार फराहम करने हुकूमत की अज्म की अकासी होती है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की सदारत में आज जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 176वीं मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर नायब वजीर आला ने जम्मू कश्मीर में सनअती मंजूरनामे को तकवीत बख्शने में जेकेएमएल के रोल को उजागर किया। उन्होंने कॉरपोरेशन के तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त अमल आवरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालदल के रास्ते से जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 964 यात्री पर मुश्तमिल 27वां काफिला वादी की जानिब रवाना किया गया। आज मजीद 3168 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत और वजीर दाखिला अमित शाह की रहनमाई के तहत भारत ने मफरूर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2021 से अब तक 36 ममालिक से 274 मफरूर मुजरिमों को भारत वापस लाया है। पीआईबी की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इस तरह के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई निजाम में मुस्तहकम करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट वजूद में लाया और 2020 के बाद इस तरह के मुजरिमों को वापस लाने का काम मिशन मोड के तहत हाथ में लिया गया, जबकि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने 3 नए फौजदारी कवानीन का इत्तलाक किया जिनमें मफरूर मुजरिमों से मुतालिक खुसूसी मद शामिल हैं। दरियास्ता वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नए भारत ने कवानीन पुराने निजाम में शामिल करने से तमाम तफावतों को दूर किया, जिसके नतीजे में दुनिया के किसी भी कोने में छुपे मफरूर मुजरिमों को वापस लाना मुमकिन हो गया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में जदीद तदरीसी तौर तरीकों को फरोग देने के लिए वादा बंद है। उन्होंने असातिजा और तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो लर्नर सेंट्रिक तौर तरीके अपनाएं ताकि तलबा के तजस्सुस और तनकीदी सोच में इजाफा हो सके। इन बातों का इजहार मौसूफा ने आज श्रीनगर में कैम्ब्रिज फोनिक्स एंड हैंड राइटिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जल जीवन मिशन की अमल आवरी और यूटी में अमलाई जा रही दीगर वाटर सप्लाई स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो दर दस्त लिए गए तमाम कामों को मियादबंद मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियन जिन्होंने हाल ही में बल्गेरिया के दो बार के MMA चैंपियन को हराकर तारीख रकम की, आज वादी वापस पहुंचे। यहां पहुंचते ही लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। हमारे पुलवामा के नुमाइंदे मीर नजीर के साथ खसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा,
2: अल्हम्दुलिल्लाह फाइट जीत के जब मैं यहाँ पे आया, अब सबकी एनर्जी अच्छी लग रही है, सबसे मिल रहा हूँ, सारे जो सेक्रीफाइस, हर जो स्ट्रगल, सारे जितने भी चीज़ें उसका फल मिल रहा है और दुआएं मिल रहे हैं हर एक से, और हर एक खुश है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल मुझे मौका था कुछ दिखाने का लोगों को, और शो टाइम था एक हिसाब से, जितना भी हमने काम किया था आज तक उसको दिखाने का मौका था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर से दिखाया कि हाँ, हम डिजर्व करते हैं सपोर्ट, हम डिजर्व करते हैं एक ऐसी फैसिलिटीज़, एक ऐसी चीज़ें जिसपे हम काम करें। अगर हम लड़कों पर काम करें, यहाँ के लोगों पर काम

0: कह रहे मुझे लगता है कि इंडियन और कश्मीरी लड़का खास तौर पे जो है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम काम कर सकते हैं। एक अच्छी एनर्जी मिले लोगों को, अच्छे प्रोग्राम्स किए जाए, अच्छे अगर आप प्रोग्राम्स करते हैं उनमें अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंस को बुला के लोगों को मोटिवेट करें, तो बस यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक स्टेप हो सकता है।
1: वाजरेक उवैस याकूब के साथ की गई तफसीली बातचीत आप शनिचरवार को सुबह 9:30 हमारे न्यूज रील प्रोग्राम में समाप्त कर सकेंगे। कुलगाम जिले के दुरहमा इलाके में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तैनात वसीम अहमद नामी उस्ताद को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदु किया गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पर्रू ने खबर दी है कि वसीम अहमद ने मजकूरा इलाके में तालीम को आम करने और तालीमी मंजरनामे को फरोग देने में एक अहम किरदार अदा किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए वसीम अहमद ने अपने तासरात का कुछ इस तरह से इजहार किया।
2: मेरे लिए मसरत और खुशी का मौका है, मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी असातिज़ा बरादरी के लिए खुशी की बात है कि मुझे सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा की तरफ से एक दावतनामा मिला, तो इसके लिए मैं हुकूमत हिंद खासकर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि मुझे ये ऐसा एजाज मिलेगा।
1: जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों को तकवियत बख्शने के लिए मरकजी सरकार और यूटी सरकारों की तरफ से खातिरखा इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में फसलों की पैदावार और पैदावारियत बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आमदन में इजाफा करने में भी मदद मिली है। इन दिनों मुख्तलिफ अजला में किसान लेवेंडर की काश की तरफ भी रागिब हो रहे हैं। इस फसल से किसानों को कम वक्त में अच्छा मुनाफा हासिल हो रहा है और इसकी काश्तकारी को पर्पल रेवोल्यूशन से भी मंसूब किया जा रहा है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा,
3: लेवेंडर के बहुत सारे फायदे हैं। ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट्स को, जो हमारी एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये इससे बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग इसकी तरफ रागिब होके चले आते हैं डिफरेंट रीजन्स की तरफ, चाहे वो किश्तवाड़ में हो चाहे वो कश्मीर में हो, इन जगहों पे सैर तफरी के लिए आते हैं। इस साल हमने 2 जगहों पे नुनर और सिरहामा में लेवेंडर फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलराइजेशन हो गई। ये परफ्यूमरी में इस्तेमाल होता है, एक कलनरी में इस्तेमाल होता है। मैं तमाम किसान भाइयों को ये दरख्वास्त करूंगा कि जो उनकी वो लैंड है जो या तो बंजर है या जहाँ पे वो कुछ नहीं उगाते हैं, कम जरखेज हैं, तो उस पे ये क्रॉप उगाएं, वो एक अच्छा खासा मुनाफा 15,000 से 20,000 तक आराम से कमा सकते हैं।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के आवाम से बकौल उनके छीने गए हकूक की बहाली के लिए काम करती रहेगी। दरियासना पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए पापुर हसन मसूदी ने उर्स मुबारक हजरत शेख शरीफुद्दीन अलमारूफ शोगा बाबा साहिब के सिलसिले में इंतजामे से तमाम इंतजाम करने की अपील की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सर शर्मा ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में एक सवाल उजागर किया, जिसके जवाब में सेहत की मरकजी वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पिछले माली बरस के दौरान जम्मू कश्मीर में टीकाकारी के दायरे के हवाले से 100% अहदाफ हासिल किए गए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर में तैनात प्रोफेसर सैयद अफशाना को एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMMRC इंचार्ज डायरेक्टर तैनात किया गया है। इस सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। सूफी बुजुर्ग फैयाज डांगरपुरी का उर्स मुबारक कल डांगरपुरा सोपोर में मनाया जा रहा है, जिसमें खत्मातुल मुअज्जमात के अलावा महफिली मौसीकी का भी इनेकाद किया जाएगा। जायरीन से गुजारिश है कि उर्स में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल की सदारत में हंदवाड़ा में एक तंजीमी उमूर की मीटिंग मुनाकिद हुई। बाद में उन्होंने लंगेट पार्क में एक कन्वेंशन से भी खिताब किया। इस दौरान उन्होंने जिले में पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब 5:45 पर और गुरूबी आफ्ताब 7:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा जिला सांबा है और तहसील मेरी रामगढ़ है। मेरे को खेती करते कोई कोई 10-15 साल हो गए। जमीन मेरे पास 16 कनाल है, खड़ी फसल पर ओले पड़े हैं, सारी बर्बाद हो गई। इस बार धान की फसल का मिला है हमें 63,000 मुआवजा मिला था, बहुत फायदा हुआ इसका। जो बहुत जरूरी है दोनों फसल का जो करवाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सामिन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती की बदौलत दुनिया भर में एक मुनफरिद शिनाख्त रखता है। यही कुदरती वसाइल यहाँ की मईशियत, सकाफत और अवामी जिंदगी की बुनियाद भी हैं। तहम गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मौसमियाती तब्दीली ने इस हसास हिमालयी खत्ते को गैर मामूली चैलेंजों से दोचार कर दिया है। बेवक्त बारिशें, शदीद गर्मी, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने जैसे वाकात अब महज इस्तिस्नाई हादसात नहीं रहे बल्कि एक तलख हकीकत बनते जा रहे हैं। पीर के रोज खत्ते में बादल फटने के मुतादिद वाकात इस अमर की वाजिया निशानदेही करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के असरात अब बराह रास्त इंसानी जिंदगी, बुनियादी ढांचे और इक्तसादी सरगर्मियों पर मुरतब हो रहे हैं। माहरीन मौसमियात और माहौलियात इस बात पर मुतफिक हैं कि हिमालयी खत्ता दुनिया के उन इलाकों में शामिल है जहाँ मौसमियाती तब्दीली के असरात नस्बतन ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस किए जा रहे हैं। दर्ज हरारत में मामूली इजाफा भी यहाँ के ग्लेशियर्स, दरियाओं और आबी जखायर पर गहरे असरात मुरतब करता है। यही वजह है कि बारिशों के अंदाज में तब्दीली, बादल फटने के वाकात और अचानक सैलाबों के वाकात में इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसे हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली को महज एक साइंसी बहस न समझा जाए बल्कि इसे तरक्याती मनसूबा बंदी, शहरी नज्म व नस्क और अवामी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बनाया जाए। ताहम सूरत हाल का एक और हौसला अफजा पहलू ये है कि हुकूमत और मुतल्लिका महकमे इस मसले की संगीनी से पूरी तरह आगाह हैं और मुसलसल ऐसे इकदाम पर गौर किया जा रहा है जिनके जरिए अवामी जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी चैलेंज से निमटने का पहला मरहला इसकी बरवक्त शिनाख्त और साइंसी बुनियादों पर तजिया होता है और यही अमल आज जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। इस तनाजुर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीर को मुनक़दा कॉन्फ्रेंस खुसूसी अहमियत की हामिल है जहां माहिरीन माहौलियात, साइंसदानों और पॉलिसी साजों ने मौसमियाती तब्दीली के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खोज किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस हकीकत को उजागर किया कि हिमालयी खत्ता तेजी से बदलते मौसमी हालात का सामना कर रहा है और गुज़श्ता बरस के दौरान तकरीबन हर रोज किसी न किसी कुदरती आफत ने इस हसास खत्ते को मुतासिर किया। इनका ये मुशाहिदा इस हकीकत की अक्कासी करता है कि मौसमियाती तब्दीली का मसला मुस्तकबिल का नहीं बल्कि मौजूदा दौर का एक चैलेंज बन चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी तकरीर में इस अहम हकीकत पर जोर दिया कि तरक्की और माहौलियात को एक दूसरे का मुखालिफ तसव्वुर करना दुरुस्त नहीं। दरहकीकत कुदरती वसाइल खुद एक मजबूत बुनियादी ढांचा है। वाटर शेड्स, वेटलैंड्स, जंगलात और कुदरती आबी गुजरगाहें न सिर्फ माहौल के तवाजुन को बरकरार रखती हैं बल्कि सैलाबों के खतरे को कम करने, पानी को महफूज रखने और हयातियाती तनव के तहफ़ में भी बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अगर इन कुदरती निज़ामों को नुकसान पहुंचता है तो इसके असरात बिल आकर इंसानी जिंदगी और मईशत पर भी मुरतब होते हैं। इसलिए कुदरती वसाइल का तहफ़ दरअसल आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मुतरादिफ है। ग्रीन जम्मू कश्मीर जैसी मुहिमात भी इस सिलसिले में मुस्बत पेशरफ की अलामत हैं। शजरकारी, जंगलात के तहफ़ आबी जखायर की बहाली और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी को फ़रोग देना न सिर्फ मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मददगार होगा बल्कि खत्ते की कुदरती खूबसूरती और हयातियाती तनव को भी महफूज रखेगा। तरीकी का हकीकी तस्वुर वही है जो कुदरती वसाइल के तहफ़ के साथ इंसानी जरूरियात को भी पूरा करे। जरूरत इस बात की है कि मौसमियाती तब्दीली को एक इज्तिमाई जिम्मेदारी समझते हुए हुकूमत, साइंसी इदारे, तालीमी मराकज, समाजी तनजीमें और आम

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। समीन प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। तालीम को हमेशा तरक्की, मौशी इस्तेकाम और समाजी बेहतरी का बुनियादी जरिया समझा जाता है, लेकिन जब तालीमी निज़ाम मंडी की ज़रूरियात और जदीद महारतों से हम आहंग न रहे तो तालीम और रोज़गार के दरमियान एक नुमाया खिला पैदा हो जाता है। पाकिस्तान में यही सूरत हाल बतदरीज गहरी होती जा रही है, जहाँ हर साल हज़ारों नौजवान तालीमी इदारों से फारिगुल तहसील होते हैं मगर उनकी बड़ी तादाद मुनासिब रोज़गार हासिल करने में मुश्किलात का सामना करती है। इसे वाज़ह होता है कि मसला सिर्फ बेरोज़गारी का नहीं बल्कि तालीम, महारत और रोज़गार के दरमियान बढ़ते हुए अदम तवाज़ुन का भी है। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम असासा तसव्वुर किया जाता है। ताहम जब नौजवानों को ऐसी तालीम फराहम न की जाए जो अमली महारतों, जदीद टेक्नोलॉजी और सनती तकाजों से हम आहंग हो तो उनकी सलाहियतें मईशत की ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो पाती। इसके नतीजे में एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ती है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद अफराद की कमी बरकरार रहती है। बहुत से तालीमी इदारे अब भी ऐसे निसाब पर इन्हिसार कर रहे हैं जो तलबा में नज़रियाती मालूमात को पैदा करता है, लेकिन उन्हें अमली महारतें, तनकीदी सोच, मसला हल करने की सलाहियत और पेशेवराना रवैये फराहम नहीं कर पाता। यही वजह है कि डिग्री रखने वाले बहुत से नौजवान मुलाजमत के लिए दरकार महारतों से महरूम रह जाते हैं। फनी और तकनीकी तालीम का महदूद दायरा भी इस बहरान को बढ़ा रहा है। जदीद मईशत में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग और दीगर तकनीकी शोबों की अहमियत मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन इन शोबों में तरबियत याफ्ता अफरादी कौत की तादाद अब भी महदूद है। इसके बाइस रोज़गार के मौके मौजूद होने के बावजूद मुनासिब उम्मीदवार दस्तियाब नहीं होते। सनती शोबे और तालीमी इदारों के दरमियान कमज़ोर रबता भी एक अहम मसला है। जामियात और कॉलेजों में हासिल होने वाली तालीम अक्सर सन्नत, कारोबार और खिदमात के शोबों की अमली ज़रूरियात के मुताबिक नहीं रखी जाती। नतीजतन फारिगुल तहसील नौजवान को मुलाजमत से पहले इजाफी तरबियत की ज़रूरत पेश आती है, जिससे वक्त और वसाइल दोनों मुतासर होते हैं। तेज़ी से बदलती हुई आलमी मईशत ने महारतों की नवियत भी तब्दील कर दी है। मस्नूई जहानत, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कई रवायती मुलाजमतों की जगह ले ली है, जबकि नई महारतों की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तब्दीली के मुकाबले में पाकिस्तान का तालीमी और तरबियती निज़ाम मतलूब रफ्तार से खुद को ढालता हुआ दिखाई नहीं देता। बेरोज़गारी सिर्फ मौशी मसला नहीं बल्कि समाजी असरात भी रखती है। तवील अरसे तक मुनासिब रोज़गार न मिलने से नौजवानों में मायूसी, गैर यकीनी और अदम इत्मीनान बढ़ता है, जबकि उनकी पेशा वराना सलाहियतें भी मुतासर होती हैं। ये सूरत हाल कौमी पैदावारी सलाहियत और मौशी तरक्की पर भी मनफी असरात मुरतब करते हैं। ब्रेन ड्रेन इस खला की एक और नमाया अलामत है। बेहतर मवाके, ज़्यादा आमदनी और पेशा वराना तरक्की की तलाश में हुनरमंद अफराद बीरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समीन, कानून साजी किसी भी रियासत में नज्म व नस्क, इंसाफ और गवर्नेंस को मौसर बनाने का बुनियादी जरिया समझी जाती है। आईनी इदारे मुख्तलिफ समाजी, मुआशी, इंतजामी और कौमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए कवानीन तश्किल देते हैं ताकि अवामी मसाइल का हल निकाला जा सके और रियासती अमूर बेहतर अंदाज में चल सकें। ताहम सिर्फ कानून का वजूद किसी मसले के हल की जमानत नहीं बनता। जब कानून साजी जमीनी हकाइक, इदारा जाती इस्तेदाद, अवामी जरूरियत और मौसर अमल दरामद से हम आहंग न हो तो कवानीन और अमली सूरत हाल के दरमियान एक वाज़ह तजाद पैदा हो जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में यही तजाद नुमाया दिखाई देता है, जहां मुतअद्दिद कवानीन मौजूद होने के बावजूद इनके नताइज अवामी तवक्कुआत के मुताबिक सामने नहीं आते। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरसों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद कवानीन और इस्लाहाती इकदामात मुतारिफ कराए गए हैं, जिनका मकसद गवर्नेंस को बेहतर बनाना, अवामी हकूक का तहफ्फुज करना और कौमी तरक्की को फ़रोग देना था। ताहम अमली सतह पर तालीम, सेहत, माहौलियात, टैक्स, तामीरात, ट्रैफिक, बल्दियाती निज़ाम, लेबर कवानीन और दीगर कई शोबों में ऐसे मसाइल अब भी मौजूद हैं जो कानून साजी और इसके अमली नफाज के दरमियान मौजूद फासले की निशानदेही करते हैं। इस तजाद की एक बड़ी वजह अमल दरामद की कमजोरी है। बहुत से कवानीन पार्लियामेंट या मुतल्लिका इदारों से मंजूर तो हो जाते हैं, लेकिन इन पर मौसर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इंतजामी सलाहियत, वसाइल, निगरानी और एहतसाब का निज़ाम मतलूबा मयार पर मौजूद नहीं होता। नतीजतन कानून कागजी हैसियत इख्तियार कर लेता है, जबकि ज़मीनी सूरत हाल बड़ी हद तक तब्दील नहीं होती। पॉलिसी साजी के दौरान ज़मीनी हकाइक से महदूद आगाही भी एक अहम मसला है। बाज़ औकात कवानीन ऐसे हालात को मद्देनजर रखकर बनाए जाते हैं जो अमली तौर पर मुख्तलिफ इलाकों, मौशी तबकात या इदारों की मौजूदा सूरत हाल से मुताबकत नहीं रखते। इस अदम मुताबकत के बायस कानून पर अमल करना शहरियों और मुतल्लिका इदारों दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। इदारा जाती हम आहंगी का फुकदान भी इस तजाद को बढ़ाता है। एक ही कानून पर मुख्तलिफ विफाकी, सूबाई और मकामी इदारों को मुश्तरका तौर पर अमल करना होता है, लेकिन इख्तियारात की तकसीम, राबते की कमी और इंतजामी पेचीदगियों के बायस कानून के नफाज में रुकावटें पैदा होती है। यही सूरत हाल गवर्नेंस के मायार को भी मुतासर करती है। वसाइल की कमी भी कानून साजी की इफादियत को महदूद करती है। अगर किसी कानून पर अमल दरामद के लिए माली वसाइल, तरबियत याफ्ता अफरादी कौत, जदीद टेक्नोलॉजी या मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तियाब न हो तो इसके मतलूबा नताइज हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसका असर खास तौर पर सेहत, तालीम, माहौलियात और बल्दियाती खिदमात जैसे शोबों में वाज़ह तौर पर महसूस किया जाता है। अवामी आगाही की कमी भी एक अहम पहलू है। बहुत से शहरी अपने कानूनी हकूक और जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर आगा नहीं होते, जिसके बायस कवानीन का मौसर नफाज मुतासर होता है। जब कानून साजी अवामी शोर और समाजी रवैयों के साथ हम आहंग न हो तो इसकी अमली इफादियत भी महदूद रह जाती है। तेजी से बदलते हुए माशी और तकनीकी हालात ने कानून साजी के अमल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अगर कवानीन और अमली सूरत हाल एक दूसरे से हम आहंग न हो तो इस्लाहात की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और अवामी तवक्कुआत और रियासती कारकर्दगी के दरमियान फासला मजीद बढ़ जाता है। यही तजाद इस हकीकत को नुमाया करता है कि गवर्नेंस का असल मयार कवानीन की तादाद नहीं बल्कि उनकी अमली इफादियत, यकसा नफाज और अवामी जिंदगी में महसूस होने वाले नताइज हैं। सामीन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में समाप्त करते हैं एक और नगमा।

0: समीन आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम वादी की आवाज, यह आकाशवाणी श्रीनगर है।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।

Spotlight. यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही।

0: क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

0: कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इस आकाश

वनी श्रीनगर मीडियम वे बलाव एफ एम अख त्राशारिया पांच मै खारसन पेट समय रात सज नौ बजे पेश कशर मौसीकी आगाज मच पेश कलामे डॉक्टर मजरू रशीद पेश करन वहीद जिलानी।